ये खबरें एनएचके वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से नशर की जा रही हैं। और अब कुछ मजीद खबरें। जापानी वजीर दिफा कोइज़मी शिंजिरू ने इतवार के रोज सियोल में जनूबी कोरिया के वजीर बराए कौमी दिफा आंग्यो बाक के साथ बातचीत की। उन्होंने जजीरनुमा कोरिया को मुकम्मल तौर पर जौहरी हथियारों से पाक करने के लिए जापान और जनूबी कोरिया के साथ साथ जापान अमरीका और जनूबी कोरिया के दरमियान तआवुन जारी रखने पर इत्तेफाक किया। वुज़रा ने इस बात पर भी इत्तेफाक किया कि वो मुस्तहकम मुस्तकबिल पर मबनी दिफाई तआवुन और तबादलों को मजीद फरोग देने के लिए राबते बरकरार रखेंगे। कोइज़मी ने जो ओहदा संभालने के बाद पहली बार जनूबी कोरिया का दौरा कर रहे हैं इतवार की सुबह आन से तकरीबन एक घंटे तक मुलाकात की। ये बातचीत दोनों ममालिक के दरमियान बाहमी वजारती तबादलों के एक जुज के तौर पर हुई। दोनों वुज़रा ने इंसानी हमदर्दी के मकासद के लिए तलाश और बचाव की मुश्तरका मशकें दोबारा शुरू करने की बहुत तारीफ की। जापान की बहरी सेल डिफेंस फोर्स और जनूबी कोरियाई बहरिया की ये मशक तकरीबन 9 सालों में पहली बार रवामा मुनक्किद हुई। शिमाली कोरिया अपनी जौहरी और मिजाइल तरक्की जारी रखे हुए है और रूस के साथ फौजी तआवुन को गहरा कर रहा है। वुज़रा ने जजीरा नुमा कोरिया को मुकम्मल तौर पर जौहरी हथियारों से पाक बनाने और देरपा अमन के कयाम के लिए अमरीका के साथ दो तरफा और सह फरीकी तआवुन जारी रखने के अज़्म का इआदा किया। एटमी बमबारी के मुतासरीन हिबाकुशा कहलाने वाले अफराद के एक ग्रुप और दीगर ने इस बात की तस्दीक की है कि जौहरी हथियारों से पाक दुनिया के ख्वाब की ताबीर पाने की गर्ज से उन्हें नौजवान नस्ल के लिए अपनी सरगर्मियों को बढ़ाना चाहिए। जौहरी हथियारों के खात्मे की जापान मुहिम नामी इस ग्रुप की तश्कील के 2 साल मुकम्मल होने के मौके पर तकरीबन 60 अफराद ने टोक्यो में इतवार को मुनक्किदा इजलास में शिरकत की। ग्रुप के सरबरा तनाका तेरुमी ने तकरीर की। वो एक और हिबाक्षा ग्रुप निहोन हिदांक्यो के शरीक सरबरा भी हैं। निहोन हिदांक्यो ने जौहरी हथियारों से पाक दुनिया के असूल की कोशिशों के लिए 2024 में नोबेल अमन इनाम हासिल किया था। जनाब तनाका ने इस मौके का इस तवक्को का इजहार किया कि निहोन हिदांक्यो को ये एजाज मिलने से जौहरी हथियारों के खात्मे की जानिब रफ्तार बढ़ेगी। तहम उन्होंने तस्लीम किया कि वो जंग छेड़े जाने की तरफ तेजी से तब्दील होती महसूस कर रहे हैं। तनाका ने इसे तब्दील करने की जरूरत पर रोशनी डाली जिसे उन्होंने मौजूदा चैलेंजिंग सूरत हाल के तौर पर बयान किया।

0: उन्होंने जोर दिया कि नौजवानों को इस हकीकत से रोशनास करवाने की अहमियत है कि जंग से ज्यादा बेमानी कुछ नहीं है। जापान की बरी सेल डिफेंस फोर्स GSDF का कहना है कि उसने पहली बार मुल्क के इंतहाई मशरकी जजीरे पर जमीन से समंदर तक मार करने वाला मिसाइल लॉन्चर तैनात किया है। तजियाकार इस तैनाती को मुल्क की बहरुल कायल की अतराफ के दिफा को तकवियत देने की कोशिश का हिस्सा करार देते हैं। GSDF ने इतवार के रोज एक सोशल मीडिया पोस्ट में ऐलान किया कि उसने इस महीने मिनामी तोरीशिमा जजीरे पर टाइप 12 किस्म का जमीन से समंदर तक मार करने वाला मिसाइल लॉन्चर और हदफ के तयन के लिए जासूस ड्रोन तैनात किए हैं। जमीन से समंदर पर मार करने वाले टाइप 12 मिसाइलों की रेंज 100 किलोमीटर से ज्यादा है। मिसाइल इस बार जजीरे पर नहीं लाए गए। मिनामी तोरीशिमा टोक्यो के ओगासावारा जजायर का हिस्सा है और ये जापान के मरकजी जजीरे होनशू से तकरीबन 2000 किलोमीटर जनूब मशरक में वाके है। GSDF को उम्मीद है कि वो अप्रैल 2027 में शुरू होने वाले अगले माली साल के अवाइल से फायरिंग की मशकें शुरू कर देगी।
1: अब आज की अहम खबरों की सुर्खियां। चीनी वजारत तिजारत का कहना है कि 20 जापानी कंपनियों और इदारों को मुल्क की बरामदी कंट्रोल लिस्ट में शामिल कर दिया गया है। वेनेजुएला में बुध को आए 2 तबाहकुन जल्जलों के बाद इमदादी टीमें मलबे तले अफराद को तलाश कर रही हैं। एनएचके वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से खबरें खत्म हुईं।

0: 楽しい旅行でしたね。
1: ミーヤーのトラベルガイド。
2: अब मियां का सफरी हिदायतनामा। मियां ने नागानो का सफर किया था, जो शिनकानसन बुलेट ट्रेन के जरिए टोक्यो से 1.5 घंटे की मुसाफत पर है। इस मुनासबत से जापान की बुलेट ट्रेनों के बारे में कुछ मालूमात पेश हैं।
3: हीरा, जापान आकर आपने शिनकानसन में सफर तो किया ही होगा।
2: जी, कई बार किया है। शिनकानसन की कई लाइनें हैं जो मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों को जाती हैं। एक लाइन पर कई अकसाम की ट्रेनें चलती हैं, जिनके नाम भी अलग अलग हैं और डब्बों की साख्त भी।
3: शिनकानसन बुलेट ट्रेन इस्तेमाल करने की सूरत में मुख्तलिफ इलाकों का सफर आसान हो जाता है। टोक्यो स्टेशन से अक्सर बड़े शहरों तक के सफर में बहुत कम वक्त लगता है। मिसाल के तौर पर टोक्यो से क्योटो तक का 500 किलोमीटर का सफर 2 घंटे से कुछ ज्यादा वक्त में मुमकिन है।
2: मुसाफिर खिड़कियों से बाहर का नजारा करते हैं या फिर बेंतो यानी खाने के डब्बों से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं।
3: कई मुसाफिर किताब पढ़ते हुए वक्त गुजारते हैं, जबकि कुछ ऊँगते हुए भी नजर आते हैं। डब्बे पुरसकून और साफ सुथरे होने के बाद सफर नहायत खुशगवार होता है।
2: जी, और यकीनन आरामदेह भी।